बस दुख तकलीफां भोगण दिन में अखुन चाहू जिंदा कर मैं मर जानी मैं उस दासी मेरे निकर दी मैं उस दी पढ़ दी बाणी।

दे पागा जमना किस्मत रुड़ियां दा पारी उमरा तक नहीं दे सकते असी देना कुड़ियां दा।

जो कहिंदे अन्न दाता हो ता मुल पूरा नहीं पाउंदे, जै किसानी दा नारा फिर दसो कास तो लाउंदे। जे ना बैठे सड़कां ते, जे ना बैठे सड़कां ते, दसो की होर बजावे सैना, ना मारो किसानां नूं ये ता है देश दा गहना। जे फसलां ना हुईयां घाटा देश साढ़े नूं पैना। बुरी जून बचारे दी जे जावे किधर नूं जावे, हुण करजा नहीं मुड़दा दसो जहर क्यों ना खावे। तुसी रख लो इन्हां नूं, तुसी रख लो इन्हां नूं, पत्तो वाले दा सच कहना, ना मारो किसानां नूं।

जो भी वेखे खिड़ खिड़ जावे, भुल जावे ओ अपना दुखड़ा। कोमल मन ते शुद्ध हिरदे विच रब्बी रंग दहसदा मुखड़ा। जो भी वेखे खिड़ खिड़ जावे, भुल जावे ओ अपना दुखड़ा। जात